0: 오나기 조 드리 겐다 카로어 사시면도에 어디 삼당 국 투국도와 제 메마무지기 안에 수수이기 레가디 겐데 아오마기네 드리 레가디 산이 산이 레가디 나니 같이 그러봐
1: 제 다 메마무지게야 겐천 겐데서 당한 조 카히게 가디나 겐테서 하고라 칼라 히히바레 양 카히게 소소 엄마 세소도 메마무지게다 소소가 겐차 강이인바데 하고 히모나 Then it's a social congenital congenital in a hakoba de Gurgian. Condition at Asare, Tabechayana, and Azuka or Jega Susan Gated over Pichayda, Taginimondina, Tagi, Chenoka, Sipa, Kibuti, Sedizama, oh, Dangay can get Chenoka, Taleka Chain, and Tambu, Dupara Jugus, Sasanaji, or Tagiginchi, Jodendona, Giginchi, Chapani. Oh, tanga gege ani gozo je ta gege kange chete khogdo sa sa ke mo mamu je ke yang gen chete kde gozo je nge kange chete khogo me de ha ma go yang ta ta che chu do mamu jin ga de so so ka kana la tho de ya na so so chalung ka khoyo la tho de we ina yang kana la tho de na
0: tin de sam da na nga pa we ya go shi re sha sang gi thang da ma go sam da de nye ngo ne sha na pa ba ji gi gen de ki gi yu sang go do kim da ji le gen de ki gi yu sang go do su tar do na si gi da mi tanda rwa wangbonga tanda gi mi kashe bugudan kimzan yuebi ne rasi je dine denye dine dwa te ko kimzan gema kinye chirwa ina korangi karchi yeyo yorosna pala yinbade ke lingyo yorwa ina ko karchi gawa marasna kimzan gendi kigyo yomarwa che zan dine yindu zamba mi susu susu gajwa dili yang gatasne ko da ka temo dobu che ze ko kore pawa yinba haku nele yang jik genda danzo je chinje ta susu gajwa dili yang 인차다제 덴데치녀도 세상데 인주선바 칸테스테미네레 녜 탄다삼노 칸데스타미네 겐데다 쳇시사드니니 카테덥제 민도선거도
2: 녜 데네 탄데 치조르다 메켈리앙 긴트르삼바데 레그나 타베자장 솔로스티니지 비네레 레가 망부지야 도삼도 베자잖아 드링한조 쭉당부 게린이 랩소나 아니 인지미니지 그 쭉장여레 쭉장고리아 믹싱 게제베제 드네 야 레게 우유인데 여러봐 디레아 믹싱 게제데 간다 주도 맞이 기게 주도서 맞이 지다 라 레게 우유레 로카 장다 차 맞아 앙다본 게 라니어 데든다 디 갈반다 여러봐 수수반 진쟁 진다레 수수기 기레지 게 기우레 아니 쭉난 그 쭉장이 한 게 기레지 기우레 아니 간조 쭉 디나리 보고 참매 게야 ये गांजो जी गे जमी इंदु जमा गे क्ले क्ले जी की गुरे अनि गे की तो ना याकु की जा तिनी केरी सुरे बे याकु जी होतो पेचे नागवान जी रे ने ने रे ने रे केरी सु अनि ति याकु छास न ओ ता तिरी सुरे बे जांग मशी हो छा तो उने गे याकु शी हो के जा अ सया जी अनि गांजो याके तोन मा सो ले जी कर सो रे ता गांजो लोखान चुन जी जांग रे याकु छे मा तो अनि मा मो बले छे मशी हो जी गे कले खाउ जी होरवा छे ता लेक छुंग से जिंग ने या जी गे ठिक सांग लो तो युए बजी छु अनि रिम छि रिम छि गे ठिक सांग लो तो याकु युए बिन अनि मा मो ब कडे कडे जी पेंटो कडे कडे युए की गुबी गुम जें कडे रे गुबा द गुम जें तो मांगुल छि मे से गांजो छि सो गा जी लेदी जाम लो मने गांजो छाम रे छो गुरे रे बा छु रे जों छो आ दे दु गुरे अनि मे जी ल्यांग गे ठिक सांग लो तो मे बिन अनि मांगु जी रा द न्याम तो लेगे छे खा गु रे बा अनि ने जी दे ति ति छो की जी केचे रांगसी दे जों मांग छि लब जे तांग ने जी गे ठिक दे इन जी मि जी गु दो आ सम सा रे अनि रिम छि रे छि ने अनि जी डार डार रे रूम मे रो सांग दो न लोब जों दे ति छो या गु जे के गु के अन रे रा यो रे अनि एन रे जी रा दे जाम बा लिया अनसु तंदे के दा छो आ जी बु इन ने दा सु लोब जों गु के रा दे जों ने रे ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས digida demba ta chik cha to gure samsan rishto
3: tering ka lin sin na ge ni ma wang de ta tin ji do ji ni da nyang to ge n che ke ba ge ge ji ni le mu hyo ji yo bi chi ji mun tu de lin sin sin ba ga su hyo